0: आवाज़ तैजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ तैजिक 4 बजे दुशंबे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज़्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: नमस्ते जी प्यारे सुनने वालों, आप रेडियो ओजीतोजिक हिंदी कांत को सीधे आकाश में सुन रहे हैं। बेब के साथ है शोरा न्यूज़ ओवा और हमारे प्रोड्यूसर अली शेर अलीव। इस घंटे की मुख्य खबर है, ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति मुली रहमान ने उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्ज़ियोयेव से टेलीफोनी पर बातचीत की। ताजिकिस्तान चीन के चोनचिंग शहर के साथ औद्योगिक सहयोग का विस्तार कर रहा है और अन्य समाचार हिंदी बहा को सुन सकते हैं। आज ताजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति राष्ट्र का नेता मौली रहमान ने उज़्बेकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति शौकत मिर्ज़ियोयेव के साथ टेलीफोनी पर बातचीत की। वार्ता के शुरुआत में राष्ट्रपति मौली रहमान ने राष्ट्रपति शौकत मिर्ज़ियोयेव को उनके जन्मदिन के अवसर पर हृदयपूर्वक बधाई देता था और उनके उत्तम स्वास्थ्य, सुख समृद्धि और राष्ट्र के सेवा में निरंतर नई सफलताओं के शुभकामनाएं व्यक्त की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मौली रहमान ने भाईचारे के देश उज़्बेकिस्तान के निरंतर प्रगति, विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके बढ़ते प्रतिष्ठा और शाखा के बेहद सराहना की। दोनों नेताओं ने ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बीच राजनीतिक साझेदारी तथा सहयोग का संबंधों के विभिन्न समकालीन पहलुओं पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रपति मौली रहमान ने पारंपरिक मित्रता, अच्छे पड़ोसी संबंधों और आपसी विश्वास की भावना के आधार पर दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों और अधिक सुदृढ़ एवं विस्तारित करने के लिए ताजिकिस्तान के दरार प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों राष्ट्रपतियों ने आगामी अंतर्राष्ट्रीय साधक क्षेत्र आयोजनों के अवसर पर प्रस्तावित बैठकों और उच्च स्तरीय संपर्कों के कार्यक्रम भी चर्चा की। इसके अतिरिक्त दोनों पक्षों के सजग रुचि के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विचार का आदान प्रदान किया गया। ताजिकिस्तान के उद्योग और नई प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नेतृत्व तथा चीन के चोनचिंग शहर के प्रतिनिधिमंडल के बीच दुशंबे में हुए बैठक में औद्योगिक क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के विस्तार पर चर्चा की गई है। बैठक में डिजिटल प्रौद्योगिकियों, औद्योगिक पार्कों की स्थापना, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और मोटरसाइकिलों के उत्पादन के चरण 5, राजनीयकरण, स्थानीयकरण तथा उच्च योग्य विशेषज्ञों के प्रशिक्षण के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर भी विचार किया गया। मई 2024 में ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति मौली रहमान के चोनचिंग के राष्ट्रीय यात्रा के परिणामों को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षों ने उन उपलब्धियों के व्यवहारिक कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध अवसरों का प्रभावी उपयोग करने में महत्वपूर्ण पर जोर दिया। बैठक के अंत में चीनी पक्ष ने संयुक्त निवेश और शैक्षणिक पहलुओं को शुरू करने के लिए परियोजना दस्तावेजों का एक पैकेज सौंपा गया। दोनों पक्षों ने उद्योग के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन और पारस्परिक रूप से लाकारी सहयोग को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। इक्कीस کیست ایسا جولای تاکا چین کشیان گشار میسیل کرود ای کامرس سایوگی ون ویکاس منچا یوجید که یا گایا جسم تاجکستان سرکر که دین سانچار سیوا که پتی مندل نباگ لیا منچ پر تاجکستان که دیجیتال روستا کرترین بودی ماتا پانچ جی نتروار گورد انترنیت ویکاس که اپلاب دیو که پرستود که یا گایا ساتین ترشه ساجه دار که گیس دیجیتال کوریدور کرترین بودی ماتا اور ای کامرس که کشتر می نویش ایوان سایو کلیه منترید که یا گیا پیاریس نوالویت استایی سمچار همه دوسری پرسارانجاری همه ریدیو که سات رایه

दोस्त वो है जो थम के रखता है हाथ, परवाह नहीं उसको कौन है तुम्हारे साथ। उसकी आंखों में चमक दिखती है जब होते हैं तुम्हारे साथ। गुजर जाता है वक्त मिनटों में जब करते हैं उससे बात। दोस्त वो है जब सामने आ जाएगा खुद बयां हो जाता है दिल के हालत। कुछ सोचना नहीं पड़ता जब होती है उससे बात।

दोस्त वो है जो थम के रखता है हाथ, परवाह नहीं उसको कौन है तुम्हारे साथ। उसकी आंखों में चमक दिखती है जब होते हैं तुम्हारे साथ। गुजर जाता है वक्त मिनटों में जब करते हैं उससे बात। दोस्त वो है जब सामने आ जाएगा खुद बयां हो जाता है दिल के हालत। कुछ सोचना नहीं पड़ता जब होती है उससे बात।